0: ओके दिस इज रियली वियर्ड, लेकिन जब भी मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोलती हूँ कि बाहर खाना खाने कहाँ जाना है, ही टेल्स मी तू चूज कर. साउंड्स क्यूट राइट, बट इट इज नॉट, बिकॉज जो भी मैं चूज करती हूँ वो उसे मना कर देता है. ही इज लाइक कुछ और बता, कुछ और बता. और ये एक बार नहीं होता, ये बार बार होता है. इट इज सो अनोइंग. इफ यू डोंट हेल्प मी, मैं उसे डंप कर दूंगी.
1: रोशी के डीएम से.
0: ओके काम डाउन माय डार्लिंग श्रुति, आई अंडरस्टैंड हाउ अनोइंग दिस कैन बी, बट आपके लिए मेरे पास एक सजेशन है. आप ना इंक्रीजिंगली केओटिक ऑप्शंस सजेस्ट करना शुरू कर दो, जैसे कि अच्छा ठीक है कहीं रुक के 24/7 पे एक हॉट डॉग खा लेते हैं, या सामने वाले ढाबे पे समोसा खा लेते हैं, या एयरपोर्ट के बाहर जो महंगे सैंडविचेस मिलते हैं वो क्यों नहीं खा लेते हैं. इतनी अजीबोगरीब वाहियात ऑप्शन सजेस्ट करो दैट ही स्टार्ट्स पिकिंग नॉर्मल थिंग्स राइट अवे. This is the only way to get him to do this. या फिर you and him, जब आप दोनों वेले हो, just make chits about the places you want to check out for खाना and just randomly let him pick a chit. जो भी आता है वहां जाके चुपचाप बैठ के खा लो. This will take care of all your जिंदगी की भसड़ as far as finding a place to eat out is concerned. और अगर श्रुति की तरह आपके भी जीवन में कष्ट हो रहे हैं, why don't you hit me up? We'll try and sort it out, my darling. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन। लेकिन आज एक बात कहनी है पहले। बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज, और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं। वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा। आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए। हाय, आई एम सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। और मैं आपको वो सब सुनाऊंगा जो डिजर्व करता है सुना जाना, नंबर 20 से नंबर 1 तक। तो शुरू करते हैं विद गाना नंबर 20, रणवीर सिंह, धुरंधर, इश्क जलाकर।
3: नंबर 20।

और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल, जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल। नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। एआर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: Actually, I don't miss anything in today's song. क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है। और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं। और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं। और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुँचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। So I don't think I don't miss anything।
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं लेकिन बाकी के 50,000 का क्या, वो दब गए, they were forgotten। इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है। एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है और ये वाला गाना भी है, क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है। एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान, दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

0: ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दान ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

तेईस हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। बस YouTube पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे। That's it, that's his subscriber count। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। The song isn't soft, it's not gentle, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नंबर टू।

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अगेन नंबर टू दिस वीक। माय नेम इज सुरेन सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म, एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं।
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price and that is something that could be deeply upsetting because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it or have they been paid to like it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me and because even I'm sometimes paying for it. So I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है। जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ। एंड देन और फिर एक और कहानी आती है। दिसंबर 5, 2025 धुरंधर, मार्च 19, 2026 धुरंधर 2। रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो। ऑर्गेनिक पीआर? अगेन एब्सोल्युटली जीरो। सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज। 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर वन है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर। करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट। They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.
2: Number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. 98.3
1: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @rjkanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज। गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: Number 10. 10, 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन लें तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे करेगा। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, फॉलो करना एकदम फ्री है। मुझे पता है आप फोन ही चला रहे थे अपना, @RJKareka और इंस्टाग्राम पर आके क्विकली से हेलो। कोई गाना शेयर करना हो बिंदास आके हिट मी अप। कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूँ, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे। बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, बिकॉज ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। @RJKareka ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके @RJKareka और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर

0: पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम गया है ये गाना। गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खां एंड रैविटोर। इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक। लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है? इट मेक्स यू ट्रैवल इन टाइम। कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है। लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कभी भी खुल जाता है। अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में। वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के चैप्टर नंबर 2019 में जा पहुंची। वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था।
2: रास्ते जा भी दूं, मैं गवाही मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं।
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल पे बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिप सिंक कर रहे थे। एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। आई रिमेम्बर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर। इनफैक्ट गाना इंडी टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज नंबर 1 सॉन्ग। इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए। उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है। जहां इट डजंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप एक गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार है निखिल डिसूजा। ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है। दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: What a song! Tanishq Bagchi की composition है, ध्वनि में अनुशाली है निखिल डिसूजा की आवाज, अराफत महमूद के लिरिक्स हैं, राधिका राव एंड विनय सप्रू ने ये वीडियो बनाई. Everything about this song is iconic. For the real OG pop culture fans, मैं एक indie pop quiz पूछूंगी आपको. It's a difficult one. At RJ Kanega on Instagram पर आओ और मुझे बताओ इस गाने वास्ते में ध्वनि भानुशाली का ब्रेकअप होता है, ठीक है? वो ब्रेकअप कितने बजे होता है मुझे आके at RJ Kanega पर बताओ. मेरे को full confidence है आपको पता होगा. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. The social media sensation गाने का नाम है शीशा. मिट्टा रॉर की आवाज इनकी composition. मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा is playing right next for you on गाना नंबर 5. You're listening to गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 5.

0: Diljit Dosanjh, the man you are, and what a collaboration with Sia, gaane ka naam hai Ranja. Pichle hafte se ek nahi, do nahi, teen nahi, char bhi nahi bro. Pure 6 positions super jump kar Ranja was this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10.
2: Gaana Indie Top 10.
3: Kanika ke saath. On Mirchi.
0: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. And this show is all about the hottest pop music of the week. वो कहते हैं हर गाना अपना लिस्टनर ढूंढ लेता है, पर पता नहीं कुछ गाने हमको रात को ही ज्यादा अच्छे क्यों साउंड करते हैं. लाइक रियली थिंक अबाउट इट, देयर आर सम सॉन्ग्स जो आपने दिन में 2-3 बजे सुना तो ठीक है, यू विल गिव इट लाइक अ 6/10. वही गाना 2 AM पे हिट्स राइट इन द फील्स, दिल के सारे इमोशंस उमड़ जाते हैं. और ऐसा ही एक गाना मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, उसका नाम है जुल्फे बाय साहिल. दो बड़ी टॉर्चेस के साथ इस गाने पर हम एक स्पॉटलाइट मारना चाहते हैं, बिकॉज ब्यूटिफुल सॉन्ग, ब्यूटिफुल आर्टिस्ट. साहिल ने अपनी जर्नी बहुत सारे आर्टिस्ट की तरह कवर्स गाकर ही शुरू करी थी, मैशअप्स गाई, वहीं से अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे जब लोग उन्हें ट्रस्ट करने लगे, उनके म्यूजिक के साथ जुड़ना शुरू करे, उन्होंने अपना ओरिजिनल म्यूजिक अपने फैंस के साथ शेयर किया. एंड फैंस ने कस के प्यार दिया, बहुत ओपन रहे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एंड दे केप्ट आस्किंग फॉर मोर न्यू सॉन्ग्स. उन्हीं में से एक गाना है जुल्फे. इट्स अ प्रॉपर लेट नाइट कन्फेशनल सॉन्ग, ऐसा मोमेंट जब आप किसी को कॉल नहीं करते हैं लेकिन उनके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाते हैं. रियलिटी इमेजिनेशन के बीच का जो स्पेस है, जिसको मे बी आप ओवर थिंकिंग कहते हैं, बट उसका भी अपना मजा है. इट्स क्वाइट R&B सॉन्ग, वेरी इंटीमेट, वल्नरेबल है, दैट्स साहिल की स्पेशलिटी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आज की हमारी गाना स्पॉटलाइट में दिस इज जुल्फे बाय साहिल, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

राजा मेटा। साहिल की आवाज में दैट वॉज जुल्फे फॉर ऑल द लेट नाइट थिंकर्स। अगर आप थोड़ा ओवर थिंक करते हैं ये गाने को बैकग्राउंड में लगा कर करना, एटलीस्ट बेटर रहेगा। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ अपने 2 AM वाली प्लेलिस्ट शेयर करो। आई माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। अगले वाला गाना इज मेरा आपका सबका 2 AM, 2 PM, 3 PM, 5 PM सॉन्ग। ये गाना 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है अनूप जैन की आवाज में। गाने का नाम है अर्ज किया है। इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 3।

0: गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको ये गाना बहुत पसंद है। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप किया है करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: यू आर लिस्निंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल
1: कसेट क्लासिक।
0: हमारी कसेट क्लासिक जहां पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है तू बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। सोनू निगम का नाम ही काफी है, ही इज अ फुल रेंज म्यूजिशियन। जितने पॉपुलर सोनू निगम एज अ हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, उतने ही पॉपुलर वो एज अ पॉप स्टार भी हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया में पॉप स्टार्स कब बने? मतलब गाने बहुत बड़े हो जाते थे, पर उन गानों को हम वो गाना किस मूवी में आया है या उस गाने में कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है उससे याद रखते थे। देन केम अ वेव ऑफ आर्टिस्ट अर्ली 90s लेट 90s में, ये पॉप स्टार्स जैसे कि सोनू निगम, शान, लकी अली, जिन्होंने इंडियन इंडी पॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाया, जिनके गानों की म्यूजिक वीडियो में कोई बड़ी फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि आर्टिस्ट खुद फीचर होते थे, एंड सोनू निगम वाज द पोस्टर बॉय ऑफ दैट चेंज। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना शुरू किया उन्होंने। ऑल्दो वो बहुत बड़ी फिल्मों के लिए ऑलरेडी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, बट उन्होंने

इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक को भी उतना ही स्पेस एंड अटेंशन दी। एंड उस फेस का ये सबसे मस्ती भरा गाना है। द सॉन्ग इज यंग, वेरी पेपी, एक फ्लर्टेशियस एनर्जी है एंड किसी मूवी का सीन बनने की जरूरत नहीं थी बिकॉज इन इट्स ओन इस गाने ने अपनी एक सिनेमैटिक दुनिया बनाई। इस गाने में सोनू निगम के साथ बिपाशा बासु इज द फीचरिंग एक्टर। It was a youth favorite back then. It is till now. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सोनू निगम की आवाज में द फॉरएवर आइकॉनिक गाने का नाम है तू। It's playing right next for you on Alcaset Classic this week. बंदी का नाम है कनका। Enjoy.

यार ये गाना सुनते हुए लगता है कि टोपी पहनो और उस टोपी को उल्टा कर दूं। Something about this song which just serves swag. सोनू निगम की आवाज में That Was Tu on our cassette classic this week. एल्बम का नाम है किस्मत, म्यूजिक है बिडू का एंड लिरिक्स हैं देव कोहली के। I can't believe अभी थोड़ी देर पहले मैंने swag word use किया because मुझे cringe होता है उस word से। So to make myself forgive that and for you to forgive me, सीधा बढ़ते हैं इस हफ्ते के numero uno गाने की towards। पिछले हफ्ते से अपनी position पर बरकरार ये गाना history बना रहा है। गाने का नाम है Baron by this super talented musical act called Banjare। उन्हीं की आवाज, उन्हीं के lyrics, उन्हीं की composition 6 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार। Third time in a row, Baron is on Gaana number 1 and it's playing right next for you only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanaka. Enjoy. Number 1.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा।

Mitchie. It's hot.

आई लव यू ऑल। दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Mirchi, it's hot.
1: None of this messy, Jay.

Hello there. This is your girl Priscilla, and yes, baby, Mirchi Mornings has officially entered the chat. आज का weather थोड़ा सा confused हो सकता है, traffic थोड़ा सा toxic हो सकता है, लेकिन हमारी vibe एकदम मिर्चीदार है. मेरा नाम है Priscilla, और मैं हूँ तुम्हारी morning buddy for next few hours. अभी फिलहाल office जा रहे हो, work from home कर रहे हो, breakfast बना रहे हो, या फिर अपने कल रात के decisions के बारे में rethink कर रहे हो. जो कुछ भी कर रहे हो, मेरे साथ बने रहो, क्योंकि honestly यहाँ पर होने वाली है ढेर सारी गपशप, ढेर सारी बातें. तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स भी मिलने वाली है यहीं पर, एंड साथ साथ में बीच बीच में मिर्चीदार बैंगर्स भी आने वाले हैं. दैट्स योर फेवरेट पार्ट, आई नो. ऑल्सो इफ योर बॉस आस्क्स व्हाई यू आर स्माइलिंग दिस अर्ली, जस्ट से साइड इफेक्ट्स ऑफ लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में फटाफट से मुझे अपने साथ रखो इंस्टा और एक्स पर भी. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033 64 7244. फिलहाल फटाफट से मुझे फॉलो करो एंड सुनते जाओ मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: this is your girl Priscilla with you and you're vibing with me on Mirchi Mornings. आज का दिन way back in 1905 Las Vegas was officially founded. और फिर 1940 में Richard and Maurice McDonald opened their first ever McDonald's in California. And Disney fans, 1928 में the first Mickey Mouse film Plane Crazy was screened today. Imagine Mickey back then becoming more famous than half the influencers on reels today. Also आज के दिन है International Day of Families. So quick reminder to call your parents before they start asking you. तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी? And a little space nerd moment. 1618 में Johannes Kepler discovered the harmonic law of planetary motion. मतलब बंदा literally prove करके गया कि planets भी vibes पे move करते हैं. And whether you're driving to work right now या फिर pretending to work from home while making chai and pirantas. Thank you for making me part of your mornings. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. मिर्ची प्रिस मेरा हैंडल नेम है इंस्टा और एक्स पर. इन केस यू वांट टू फॉलो मी एंड व्हाट्सएप करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर. दैट्स 9033647244. फिलहाल चिपक के बैठो यहीं पर आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था.
2: शशि वो मैनहट्टन है.
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी.
2: टैन मतलब वो धूप की छाप.

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में एंड यू आर लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स। तो सुनो, साइंटिस्ट एट द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हैव क्रिएटेड अ टाइनी ब्रेन पावर्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। हाँ जी, टाइनी ब्रेन कंप्यूटर। बेसिकली दे कंबाइंड रियल ह्यूमन ब्रेन सेल्स विद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इनटू वन फ्यूचरिस्टिक सिस्टम। एंड द क्रेजीएस्ट पार्ट इज दैट दिस लिटिल डिवाइस कैन एक्चुअली लर्न एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न्स आफ्टर बीइंग ट्रेन्ड लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ऑनेस्टली इफ दिस टेक्नोलॉजी गेट्स टू स्मार्ट, वन डे योर लैपटॉप माइट से आज मैंने काम करना ही नहीं, मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ। वैसे अर्ली अटेम्प्ट्स एट दिस टेक्नोलॉजी हैड वन बिग इशू, द ब्रेन cells and electronics weren't properly connected, but now researchers have built it together in a full 3D system. And somewhere हर देसी parent जो है उनके excitement का level और बढ़ गया है। वो कह रहे हैं श्यामा जी का बेटा जो है अब तो computer बन गया है, तू कुछ मत करना। वैसे jokes about this could seriously change the future of computing, medicine and AI. Imagine machines learning more naturally, almost exactly like humans do. लेकिन hopefully they don't also learn how to leave dishes in the sink and ignore WhatsApp calls from mom, because वो तो सिर्फ human error हो सकता है। और इसी बात पर चलाते कुछ मिर्चीदार गाने, तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो Insta और X पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिस आवर और यहाँ पर हम बातें करते हैं वेदर के बारे में। सो राइट नाउ इट्स अराउंड 48 डिग्रीज फारेनहाइट आउटसाइड एंड बिकॉज ऑफ द विंड इट्स फीलिंग लाइक इट्स 44 डिग्रीज फारेनहाइट। मतलब वेदर जो है वो बेसिकली आज हमारे साथ कैटफिशिंग कर रहा है, दिख कुछ और रहा है, एक्चुअली कुछ और है। राइट नाउ स्काईज आर मोस्टली क्लियर, सो इफ यू आर ड्राइविंग टू वर्क विद सनग्लासेस एंड कॉन्फिडेंस, इंजॉय इट व्हाइल इट लास्ट, क्योंकि 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में वी विल हैव पार्टली क्लाउडी स्काईज एंड बाय 2 PM इट्स गोइंग टू बी मोस्टली क्लाउडी। यानी कि स्काई जो है वो अचानक से बोलेगा आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन। Today's temperature will hang between 47 to 67 degrees Fahrenheit. That is pretty 6-7. Good news though is zero rain in last 24 hours and zero rain is expected in the next 24 hours too. So, aaj freshly washed car can finally stop living in fear. वैसे आज का weather is giving peak immigrant life energy. काफी दिल्ली type के weather की, specially wedding season वाले weather की feels दे रहा है. So, layer के player बनो, keep your chai emotionally supportive and साथ साथ में अपना SPF 50++ लगाना बिल्कुल मत भूलना। एंड हाँ, पानी पीना मत भूलना जो कि तुम हमेशा भूल जाते हो। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और अभी तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मिर्चीदार गाने मैं प्ले करने वाली हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर, एक्सक्लूसिवली विद मी, बोले तो प्रिसिला। मुझे जाकर फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर। माई हैंडल नेम इज मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

हेलो देयर माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग। जरा बारी आ चुकी है हम पता करें दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले ड्यूरिंग हिज चाइना विजिट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कॉल्ड अमेरिका अ डिक्लाइनिंग नेशन एंड ट्रंप जी ने रिस्पॉन्ड किया है इस पर कहते हुए शी वाज रेफरिंग टू द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट हिज करंट टर्म। एंड नंबर टू पर ट्रंप जी ऑल्सो स्पोक अबाउट शी जीज प्रेजेंस ऑन स्क्रीन सेइंग ही इज वेरी वेरी टॉल एंड हैज दैट काइंड ऑफ लुक हॉलीवुड वुड स्ट्रगल टू कास्ट। ऑनेस्टली इमेजिन बीइंग सो पावरफुल पीपल आर डिस्कसिंग योर बायोपिक casting before the trailer even exists. And finally, cricket se number 3 par Rohit Sharma roasted himself after scoring 25 off of 26 balls against Punjab Kings. During the Mumbai Indian dressing room speech, he joked that while everyone else was batting fast, he was busy playing test cricket. Waise ise kehte self-awareness level 3000. That's it for Mirchi Hour ka 3 for this hour with me Priscilla. Abhi mujhe follow karo Mirchi Pris ke naam se, dhuno mujhe Insta aur X pe, मेरा हैंडल है वो, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अ बिग विन फॉर इंडिया एट द थाईलैंड ओपन 2026 इन बैंकॉक। इंडियाज पावर डुओ सात्विक साईराज रणकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी स्मैश देयर वे इनटू द मेंस डबल्स सेमीफाइनल्स। एंड नॉट जस्ट अ टाइनी विन, ओके, दे डिफीटेड जापान्स टाकुमी नोमोरा एंड युइची शिमागामी विद अ सुपर सॉलिड स्कोर लाइन, दैट्स 21-12 एंड 21-13। Honestly, that score was less match and more respectfully demolished. Meanwhile, in women's singles, India's PV Sandhu fought hard but crashed out in the quarterfinals against Japan's Akane Yamaguchi. Sindhu actually took the first game 21-19, but Akane made a comeback and won the next two. And can we just please appreciate badminton players for a second, because one rally lasts longer than most situationships in New York City. Also, फटाफट से तुम्हें याद दिला दूं कि आरके जूल्स कह रहे हैं गेट रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइजेस। जीरो लेबर चार्जेस हैं वहां पर और जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस तुम्हें पे करने पड़ेंगे। यू जस्ट पे फॉर द गोल्ड एंड डायमंड्स दैट यू बाय। तो बेसिकली तुम खुश, तुम्हारा वॉलेट खुश और ज्वेलरी पाने वाला भी खुश। तो फटाफट से आरके जूल्स पर पहुंचो अगर तुम्हें कुछ ज्वेलरी शॉपिंग करनी है तो। और फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स अगर सुनने हैं तो सुनते रहो मुझे यानी कि प्रिसला को मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPR RIS, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244। Stay tuned and stay hot.

हेलो माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिल्ट्री मॉर्निंग्स। और आज के दिन सीरियसली इज स्टैक्ड विद स्टार पावर। सबसे पहले आज के दिन है माधुरी दीक्षित जी का हैप्पी वाला बर्थडे, द वुमन हु स्माइल अलोन कुड फिक्स ग्लोबल सैडनेस। आल्सो यू शेयर योर बर्थडे विद ब्रिटिश टेनिस चैंप एंडी मरी। म्यूजिक लवर्स से हेलो टू ब्रायन एनो एंड फॉर माय टॉलीवुड स्क्वाड बर्थडे विशेस टू राम पटिनेनी। आल्सो बॉर्न टुडे इंडियन म्यूजिक कंपोजर संतोष नारायणन एंड एक्ट्रेस होस्ट Anusuya Bhardwaj, and Hollywood faces like Alexandra Breckenridge from Virgin River and Jamie Lynn Sigler from The Sopranos. And to everyone celebrating today, whether you're turning 21 or just turning emotionally unavailable, I hope your day is filled with love, laughter, happiness, cakes and no calories. And hey, agar birthday shoutouts bhejne hai to mujhe message kar sakte ho Insta aur X pe, mera handle hai mirchipris, that is mirchipris, and WhatsApp pe mera number hai 9033 mirchi, that's 9033 6472444. Stay tuned and stay hot.

0: आई होप प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब बारी आ चुकी है सोना एंड चांदी का रेट जानने की।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रीडिंग एट $4,600, $4,600 पर ट्रे ऑउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेंड कर रहे हैं, जो पिछले हफ्ते से थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पर है। आने वाले मदर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 12 इंस्टॉलमेंट्स में ज्वेलरी घर लेके जाएं और बिना किसी इंटरेस्ट के राज ज्वेल्स की टीम को पैसे दें। ये बहुत यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन है ज्वेलरी की, जिसके अंदर आप पहली 12 किस्तें पे करने के बाद सेम क्रेडिट कार्ड दोबारा यूज कर सकते हैं नेक्स्ट परचेज की राज ज्वेल्स के साथ। सो आइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं RajJewels.com के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
0: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची पर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसला के साथ में। और अब मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड stay hot.

0: हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड नाउ वी आर हेडिंग इनटू राशि जोन नंबर वन.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: एरीज यानी मेष राशि, मनी मैटर्स आर कॉलिंग. एरीज, आज इम्पल्स शॉपिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो. जस्ट बिकॉज इट सेज लिमिटेड एडिशन डजंट मीन योर क्रेडिट कार्ड शुड क्राई लेटर. लकी कलर फॉर यू इज वायलेट, लकी नंबर इज 18. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, द यूनिवर्स इज बेसिकली योर हाइप स्क्वाड टुडे. व्हाटएवर यू स्टार्ट नाउ कैन सीरियसली ग्रो बिग लेटर. कॉन्फिडेंस पे फुल वॉल्यूम रखो. लकी कलर फॉर यू इज सेज, लकी नंबर इज 4. जेमिनी यानी मिथुन राशि, यू आर फीलिंग फियरलेस टुडे. And honestly, main character energy आ गई है. बस over confidence में reply all मत कर देना office email पर, समझे? Lucky color is tangerine, lucky number is 1. Cancer यानी कर्क राशि, your mindset is powerful today. Positive सोचो, bold moves लो और अपने आप को underestimate करना बंद करो for God's sakes. Lucky color for you is yellow, lucky number is 29. Leo यानी कि सिंह राशि, career spotlight is fully on you baby. Weekend तक कुछ exciting opportunities या appreciation मिल सकता है. Wow, walk in like your Pushpa from Pushparaj with your background music playing. Lucky color for you is crimson red, lucky number is 7. Virgo yani kanya rashi, adventure mode activate kar lo. Break the routine thoda sa, same grocery store, same playlist, same sadness, enough yaar, try something new. Lucky color for you is mustard color, lucky number is 31. And that's it for first half of Rashi Zone. Main hu Prisala tumhare saath mein. This is of course Mirchi Mornings. Thodi si der mein lekar aati hu Rashi Zone part 2. Tab tak तुम सुनो मिर्ची दार बैंगर्स एंड गो एंड फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: इधर ड्रीमर्स, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनोगे राशियों का हालचाल।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, आज थोड़ा सा केयरफुल रहो विथ न्यू पीपल। योर इंट्यूशन इज शार्पर देन योर मॉम नोटिसिंग 1 kilo वेट गेन ऑन फेसटाइम। आज के दिन ट्रस्ट योर गट। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, यू यूजुअली लव कंट्रोलिंग द प्लान, बट टुडे लेट अदर्स टेक द लीड। सरप्राइज सरप्राइज, दे मे एक्चुअली नो व्हाट दे आर डूइंग। लकी कलर फॉर यू इज मिडनाइट लैवेंडर, लकी नंबर इज 9। Sagittarius यानी धनु राशि, बॉस यू नीड रेस्ट, योर बॉडी एंड ब्रेन आर बोथ सेंडिंग HR complaints। स्लो डाउन टुडे एंड रिचार्ज विदाउट एनी गिल्ट। लकी कलर फॉर यू इज कोरल ऑरेंज, लकी नंबर इज 14। Capricorn यानी मकर राशि, पीपल थिंक यू आर क्वाइट, बट प्लॉट ट्विस्ट, यू आर एम्बिशियस AF। समथिंग यू डू दिस वीकेंड माइट जेन्युइनली शॉक पीपल इन अ गुड वे। लकी कलर फॉर यू इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 36। Aquarius यानी कुंभ राशि, टू मेनी प्लान्स, टू मेनी टैब्स ओपन, मेंटली रिलैक्स करो यार, वन स्टेप एट अ टाइम लो, इवन योर गूगल मैप्स रिकैलकुलेट्स कैमली। लकी कलर फॉर यू इज आक्वा मिंट, लकी नंबर इज 5। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, सोशल बटरफ्लाई वाइब्स ऑन हो गई है आज के लिए। गो आउट, मीट सम पीपल, मेक सम कनेक्शन, से यस टू ऑल द प्लान्स। Someone you meet now could become super important later. Lucky color for you is rose gold. Lucky number is 27. And that's it for your Mirchi Rashi Zone number 2. Reminder, stars sirf guide karte hain, lekin asli action tumhe lena hai. Main hoon Prasala, tumhare saath mein sun rahi hoon Mirchi Mornings. Aur agar tum mujhe follow karna chahte ho Insta aur X par, to mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. It's always lovely to hear from you. Right now, Mirchi, there are bangers ka time hai. Stay tuned and stay hot.

जस्ट लाइक दैट माय लवली लिसनर्स, आ चुका है इस शो का अंतिम चरण, यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप का टाइम हो चुका है. मेरा नाम है प्रिसिला, एंड बिफोर आई साइन ऑफ, जाते जाते द इंडियन रुपी के बारे में बताकर जाती हूँ. इट्स ऑफिशियली क्रॉस्ड 96 अगेंस्ट द US डॉलर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. यप, $1 इज नाउ वर्थ ओवर 96 रुपीज. फॉर कॉन्टेक्स्ट, बैक इन December 31st 2025 द रुपी हैड क्लोज्ड बिलो 90 at 89.77. Since then, it's crossed 93, 94, 95, and now it's come to 96 in 2026. Matlab, every desi expat sending money home right now, suddenly walking around with unnecessary confidence. Meanwhile, parents in India are like, beta to America jaakar Warren Buffet ban gaya hamara. To aaj ke din agar tum 100 USD bhejte ho India mein, to 9600 plus rupees ban jayenge depending on the rates and fees. Well, is par bahut sare jokes aur memes to bani rahe hain, lekin apart from those, currency changes affect travel, student budgets, remittance, shopping back home. Basically, ye desi uncle or aunties ka favorite dinner time conversation ban chuka hai. And with that, meri coffee to thandi ho gayi hai, mujhe yahan se jana padega garam karne ke liye apni coffee. Abhi ke liye tata bye bye hai. Have a great weekend, you be good and take care of yourself. Khao piyo, aish karo, maze karo aur mirchi sunte raho. Priscilla ki taraf se tata bye bye. You stay tuned and stay hot. Apna

0: बचपन में कोई भी काम करने से पहले हम ऐलान कर दिया करते थे, जैसे कि अगर जोक सुनाने की भी बात होती थी ना, तो हम यही बोलते थे, एक चुटकुला सुनाओ।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And वाकई में यार, मतलब बचपन में एक तो हम कहाँ कहाँ से तरह तरह के जोक्स उठा के लेकर आया करते थे, और एक ये डायलॉग, जोक सुनाने से पहले ये तो फर्ज बनता था, एक चुटकुला सुनाऊं। आज तो कॉमेडी कहाँ से निकल जाती है पता ही नहीं लगता, लेकिन तब हमें इजाजत लेने की इतनी ज्यादा आदत थी कि चुटकुला सुनाने के लिए भी हम पहले इजाजत लिया करते थे। इट्स जस्ट लाइक, मैम मे आई कम इन, हाँ बेटा कम इन, वैसे ही चुटकुला सुनाओ, हाँ सुनाओ ना, तो हम सुनाना शुरू करेंगे जब तक कोई हाँ नहीं बोल देता। एंड यू नो, इससे मुझे एक और बात बड़ी प्यारी सी याद आई, और वो ये कि एट दैट टाइम आपके पास जोक्स के लिए या तो स्कूल हुआ करता था, दोस्त हुआ करते थे, या आपके कजन्स आपको जोक्स बताया करते थे। ये सोशल मीडिया या फिर यू नो गूगल तो था ही नहीं कि आपको जोक्स पता होते कहीं से, आप कहीं से टीप लो किसी को इम्प्रेस करने के लिए या हंसाने के लिए, तो एट दैट टाइम ये लोग हुआ करते थे। एंड आई रिमेम्बर नाउ कि मैंने एक जोक बुक खरीदी थी, हाँ एक जोक बुक जिसके अंदर जोक्स पे जोक्स लिखे हुए थे, और फिर वो जोक्स जो थे मैं पढ़ने के बाद समझने की पहले कोशिश किया करती थी, उसके बाद फिर उसको सुनाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन सच बताऊं तो सारे जोक्स एक साइड और हाथी और चींटी के जोक्स एक साइड, बेस्ट जोक्स ऑफ दोज टाइम्स। इनफैक्ट आज भी वो जोक्स अगर कोई सुना देता है ना तो भी हंसी आ जाती है। चलो जी, इसी बात पर मिठे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वैसे तो इनकी मूवीज देखकर दुनिया का दिल धक धक करता है, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा धक धक कर रहा है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, हमारा दिल एक्स्ट्रा धकधक इसीलिए कर रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन कि आज माधुरी दीक्षित का बर्थडे है बॉस। आज मिस्टर नैन खुश तो बहुत होंगे। एनीवेज, यू नो माधुरी दीक्षित की मूवी हम आपके हैं कौन मैंने कितनी बार देखी है, कई 100 बार तो देख ली होगी। अब तो वो मूवी चल रही होती है ना, तो मुझे पता होता है कि कौन सा डायलॉग आने वाला है। यार मैं म्यूट करके मूवी देख सकती हूँ, और म्यूट करके ऐसे कि मैं डायलॉग बोल रही होंगी और म्यूट पे मूवी चल रही होगी, तो एकदम परफेक्टली सिंक डायलॉग्स निकलेंगे मेरे मुंह से। एंड दैट इज ट्रू, हम मजाक नहीं कर रही हूँ। और मेरी यह बात करें यार, MF हुसैन साहब द ग्रेट पेंटर, आपको पता है उन्होंने हम आपके हैं कौन कितनी बार देखी थी? 60 बार देखी थी। उन्हें माधुरी दीक्षित इतनी पसंद आई थी ना कि वो उनके इतने क्रेजी द फैन हो गए कि उन्होंने 60 बार तो हम आपके हैं कौन देख लिया, और उसके बाद अपने काफी सारे पेंटेड वर्क्स को उन्होंने माधुरी दीक्षित को डेडिकेट किया है। यही नहीं, एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने तो माधुरी दीक्षित के ऊपर एक पूरी की पूरी मूवी बना दी। वो अलग बात है कि वो फिल्म नहीं चली, लेकिन हाँ ये नहीं है कि MF हुसैन साहब की फैनगिरी में कोई कमी आई हो, नेवर एवर। After all, that's Madhuri Dixit that we're talking about. और बचपन में मैं भी Madhuri Dixit बनना चाहती थी। Coming up more on Madhuri Dixit today, you stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: फैंस की बात करें तो यार माधुरी दीक्षित के फैंस नहीं है, उनके तो एसीज हैं भाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड मजाक की बात नहीं है भाई, माधुरी दीक्षित की फैन फॉलोइंग वाकई बहुत क्रेजी रही और बहुत लंबी रही है। शी रियली रूल्ड द इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड एंड इन फैक्ट दैट वाज वेरी वेल डिजर्व्ड। बट नॉट मेनी नो कि माधुरी दीक्षित के एक फैन ने उनके लिए एक मंदिर बनाया इन आंध्र प्रदेश। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स अ छोटा सा मंदिर, जहाँ पर ये कहा जाता है कि वो बंदा जो है वो ऑन अ डेली बेसिस रिचुअल्स भी करता है। बाप रे, आई मीन मैं भी माधुरी दीक्षित की फैन हूँ, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है यार। एक माधुरी दीक्षित है जिनको मैंने शायद ही कभी किसी इंटरव्यू में सुना होगा ये बोलते हुए कि उनके नाम पर एक टेम्पल है, और एक उर्वशी रौतेला। Anyways, no comparisons, but you stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: एक मूवी आई थी जिसका नाम था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, और रियल लाइफ में हर एक बंदा अपनी बीवी को माधुरी दीक्षित बनाना चाहता था।
2: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड माधुरी दीक्षित सिर्फ और सिर्फ गुड लुक्स, एक्टिंग, इसकी वजह से एक आइकॉन नहीं थी 90s में। इनफैक्ट वो मैरिज प्रपोजल्स के लिए भी आइकॉन बन गई थी। यू नो, 90s का दौर वो दौर था जब माधुरी दीक्षित को बंदे भी इतना पसंद किया करते थे, कि माधुरी की फोटो लिए घूमते थे। नहीं नहीं, सिर्फ माधुरी की मोहब्बत में नहीं, अपनी मोहब्बत ढूंढने के लिए भी। जब मैरिज प्रपोजल्स की बात आया करती थी ना, तो वो माधुरी दीक्षित का फोटो लिए फिरते थे ताकि वो लोगों को बता पाएं कि उन्हें किस तरीके की लड़की चाहिए। तो मम्मी मुझे इस तरीके की लड़की चाहिए, ताई जी मुझे इस तरीके की लड़की चाहिए, और पेरेंट्स उनके जवाब बड़े सही निकल कर आते थे। अक्सर ये कहा जाता था कि माधुरी सिर्फ एक है, दूसरी नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कौन जीता होगा, एक बंदे का प्यार टुवर्ड्स माधुरी दीक्षित, उसकी फैनगिरी, या फिर माँ का ये डायलॉग जो कि सच था बाय द वे। Celebrating the Dhak Dhak girl today on her birthday on Midday Mohabbat, wishing her a very happy birthday. You stay tuned with me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi, it's hot.
4: Hit it!

0: माधुरी दीक्षित के आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस की बात करें तो बात देवदास की भी आती है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and today we celebrate the Dhak Dhak Girl, Madhuri Dikshit on her birthday. And well, जब देवदास का शूट हो रहा था, तो clearly, Madhuri Dikshit is more experienced than Aishwarya Rai. लेकिन at that time, Aishwarya was very nervous to dance with her. Aishwarya Rai ने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि वो बहुत ज्यादा नर्वस थी बिकॉज शी हैड टू डांस विद दी माधुरी दीक्षित, जब बात गाने डोला रे डोला की जाए तो। एंड क्लियरली माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स हैं। इनफैक्ट फीमेल्स में बात करें तो शी इज द बेस्ट डांसर यार। और ऐश्वर्या ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब इस गाने की शूट की बात की गई थी ना, तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई लाइव एग्जाम दे रही हो। हे बट डिड यू नो कि देवदास का एक और गाना था काहे छेड़ मोहे, उसमें माधुरी ने 30 किलो का लहंगा पहना था, जिसकी वजह से इस गाने पर डांस करना बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग हो गया था यार। लेकिन स्टिल इस गाने को देखकर आपको पता लगता है कि माधुरी दीक्षित कहीं तकलीफ में थी और 30 किलो का लहंगा संभाले हुए थी। मतलब मैं अगर शादी में कोई लहंगा पहन लेती हूँ जो जरा सा हैवी हो जाता है ना, तो दुनिया को पता होता है कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अपने कपड़ों में। माधुरी दीक्षित नेवर लेट एनीवन नो दिस। एंड डिस्पाइट माधुरी बीइंग अ क्लासिकल डांसर, माधुरी को स्टिल एक ट्रेनिंग की जरूरत थी फॉर द कथक एक्सप्रेशंस अपने रोल के लिए जो कि उन्होंने एज चंद्रमुखी प्ले किया था। अक्सर लोगों के ईगोस पर हर्ट हो जाता है कि मुझे तो सब आता है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, दैट वाज माधुरी दीक्षित, शी वेंट अहेड एंड शी डिड लर्न द एक्सप्रेशन सो दैट उनकी ही परफॉर्मेंस बेहतर निकल कर आए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: माधुरी दीक्षित का वार्डरोब इन द फिल्म हम आपके हैं कौन इतना ऑलराउंडर था, और ये बात मुझे ना उनके वार्डरोब की और उनकी भी बहुत पसंद आई थी कि वो जिस किरदार में आती है ना बस रम जाती है, वो जो कपड़े पहनती है वो कपड़े रम जाते हैं, ऐसा लगता है उन्हीं के लिए ही बनाए गए हैं। फ्रॉम वेस्टर्न टू इंडियन उन्होंने सारे तरीके के अटायर्स पहने थे इस फिल्म में, एंड आई वाज लाइक वाओ ऐसा होना चाहिए यार। इट्स नॉट जस्ट नेसेसरी कि आप सिर्फ इंडियन में ही अच्छे लगो या सिर्फ वेस्टर्न में ही अच्छे लगो, सारे के सारे वार्डरोब्स यूज करने चाहिए इंसान को।
1: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का फिटारा, एंड वेल मेरी बातें सुनकर आपको लग ही रहा होगा कि हियर इज माधुरी दीक्षित फैन टॉकिंग अबाउट हर, एंड दैट इज सो ट्रू, आई वुड नेवर डिनाई दैट, बिकॉज यू नो मैं तो बचपन में अक्सर यही सोचा करती थी बड़े होकर मुझे माधुरी दीक्षित जैसा ही बनना है, एंड हम आपके हैं कौन भाई न जाने कितनी सारी लड़कियों को इंस्पायर किया होगा हम आपके हैं कौन ने कि यार वो भी ना इसी मासूमियत से बात करे, इतनी ही जेंटली बात करे, इतने ही हल्के से धीरे से बात करे। हालांकि वो अलग बात है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपकी पर्सनालिटी किक इन कर जाती है और आपने जिस माधुरी दीक्षित को अपने अंदर समाया हुआ होता है वो कहीं गायब हो जाती है, बट ये माधुरी दीक्षित का ही काम है यार, टू कीप स्माइलिंग एंड यू नो बी चार्मिंग फॉरएवर एंड ऑलवेज। लेकिन अगर हम आपके कौन की बात की जाए तो दीदी तेरा देवर दीवाना में वो जो पर्पल कलर की साड़ी नहीं पहनी थी माधुरी दीक्षित ने, ओए होए वो तो आज भी याद है ना आपको। वेल एक्चुअली वो जो साड़ी थी इट हैड बिकम अ फैशन ट्रेंड, और वो साड़ी अक्रॉस इंडिया ना जाने कितनी सारी लेडीज ने इमिटेट करी थी, वैसी साड़ी बनवाई थी अपने टेलर मास्टर जी को बोल के कि नहीं नहीं नहीं नहीं मुझे तो माधुरी दीक्षित वाली ही साड़ी चाहिए। एंड आई एम श्योर सब रेफरेंस के लिए माधुरी दीक्षित का दीदी तेरा देवर दीवाना वाली ये जो पर्पल कलर की साड़ी है ना उसका पोस्ट कार्ड लेकर गए होंगे मास्टर जी को दिखाने के लिए कि मास्टर जी ऐसी साड़ी और ब्लाउज बना देना, जो हमारे कजन्स भी किया करते थे और हम देखते रहते थे कि हाँ हम भी ऐसा कभी करेंगे बड़े होकर। You tune in with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on मिर्ची, it's hot.

0: माधुरी दीक्षित के करियर की एक ऐसी फिल्म है जिसे हम अक्सर देखकर सोचते हैं कि यार माधुरी को ये फिल्म करने की क्या जरूरत थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड अगर आपको कभी चोट लगी है इस फिल्म से तो आपको ये नाम ऑब्वियसली याद आ गया होगा, और अगर नहीं लगी है और आपको नाम याद नहीं आया था तो मैं आपको बता दूं, द फिल्म इज हम तुम्हारे हैं सनम। लेकिन इस फिल्म का प्लस पॉइंट ये था कि भारी भरकम कास्ट थी यार। माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, सलमान खान, इन दोनों खान्स को कुछ कुछ होता है के बाद शायद इसी फिल्म में साथ देखा गया था, और कुछ कुछ होता है में भी सलमान खान का तो गेस्ट अपीयरेंस था ना, काइंड ऑफ। बट आपको पता है ये फिल्म 1996 में ही शूट होना शुरू हो गई थी। वो अलग बात है कि रिलीज 2002 में हुई। एक बहुत बड़ी चीज हो गई थी यहाँ पर कि यार इतने सालों में लोगों के चॉइसेस एंड मूवी बनाने के तरीके बदल गए थे। लेकिन सिंस इस फिल्म को 6 साल लग गए थे बनने के लिए, तो ये फिल्म जो 1996 में अगर पसंद की जाती वो 2002 में रिलीज हुई। और इस फिल्म के डिलेज को कोई रोक भी नहीं सकता था, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, डेट क्लैशेस थे, स्क्रिप्ट के चेंजेस थे, एंड होने को तो ये माधुरी दीक्षित की कमबैक होनी चाहिए थी। लेकिन सिंस ये शूट ही इतना लंबा चला, 1996 में इसको शूट करना शुरू कर दिया था, तो इट वाज नॉट रियली अ कमबैक फॉर हर। मगर अगर ऑफ स्क्रीन की बात की जाए ना, तो ऑफ स्क्रीन माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान सलमान खान की जो बॉन्डिंग थी वो बड़ी धमाल थी यार। उन्होंने ऑलरेडी इन दोनों के साथ अलग अलग काफी सारी फिल्मों में काम किया था, और इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री वाज आल्सो फैबुलस, दैट इज व्हाट पीपल स्पीक ऑफ। मगर इतनी लंबी शूट चलने की वजह से देयर वाज अनदर प्रॉब्लम व्हिच अकर्ड ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एंड दैट वाज कि माधुरी दीक्षित के अपीयरेंसेस के अंदर काफी चेंजेस आए थे, और उनके वार्डरोब में कंटिन्यूटी जैसी कोई चीज थी नहीं। वेल, ये बात आप और मेरे जैसे जो माधुरी दीक्षित के फैंस हैं उन्होंने नोटिस करी है। आई एम श्योर सारी दुनिया ने नोटिस नहीं की होगी, लेकिन क्या है ना कि हम बड़े गौर से देखते हैं कि माधुरी दीक्षित स्क्रीन पर कैसी लग रही हैं, ऑफ स्क्रीन आजकल जो हम वीडियोस देख रहे होते हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया, वहां कैसी लग रही हैं। वी नीड ऑल काइंड ऑफ अपडेट्स अबाउट माधुरी दीक्षित। टिल नाउ, wishing this magical smile wali diva a very happy birthday. You're tuned in with me, Sara, aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi, it's hot.

चल चल चल चल चलत चलत जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए।

0: आज तो माधुरी दीक्षित बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब माधुरी की भी कोई फिल्म नहीं चल रही थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड इतनी सारी फिल्में करने के बावजूद और इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद माधुरी दीक्षित की कोई फिल्म काम नहीं कर रही थी। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम जब उनको फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया गया था और हो सकता था आगे उन्हें काम ना मिलता इस वजह से। देन केम अ टाइम जब एक गाने ने रातों रात उन्हें फेमस कर दिया, एंड दैट सॉन्ग वॉज 1 2 3। वेल, तेजाब मूवी का ये गाना इतना हिट गया कि शी बिकेम अ स्टार ओवरनाइट। एंड इनफैक्ट एट दैट टाइम तो सोशल मीडिया था ही नहीं, फोन कॉल्स आप जस्ट एट द क्लिक ऑफ योर फिंगर नहीं कर सकते थे। और माधुरी दीक्षित एट दैट टाइम शी वॉज ट्रैवलिंग टू US विद हर फैमिली, एंड उनको कोई आइडिया नहीं था कि मूवी तो रिलीज हो गई है लेकिन ये गाना इतना हिट हो गया कि लोग उनके दीवाने हो गए। उन्हें तो तब पता लगा जब वो वापस आई US से, और उस दिन जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट से घर पहुंचे तो उनके घर के बाहर एक भीड़ लगी हुई थी। तब माधुरी दीक्षित को पता लगा कि अब से देयर इज नो लुकिंग बैक, एंड ये गाने ने पब्लिक को दीवाना कर दिया था। आई मीन फिल्म तो अच्छी थी ही थी, लेकिन फिल्म से ज्यादा एक्चुअली द गाना वॉज अ बिग हिट। इनफैक्ट माधुरी दीक्षित ने सिर्फ पब्लिक को ही नहीं, लोगों को भी चौंका दिया था। देयर वॉज अ टाइम जब अलका याग्निक जी, जिन्होंने इस गाने को गाया है, उनको पता लगा कि ये जो शाय सी, टिमिड सी, इंट्रोवर्ट सी लड़की है ना, जो सेट पर बैठी हुई है, ये इस गाने पे परफॉर्मेंस देने वाली है। अलका याग्निक वाज लाइक, इस गाने में पता भी है मैंने कितनी जान दी है, कितनी एनर्जी लगेगी, और ये इतनी सिंपल सी, सीधी सादी सी, चुपचाप सी लड़की इस गाने पे डांस कर लेगी। जब उन्होंने परफॉर्मेंस देखी तो उन्हें समझ में आया कि मैंने तो गलत ही जज कर लिया यार, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बिकॉज माधुरी दीक्षित सेट्स पर तो चुपचाप रहा करती थी, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात हुआ करती थी ना, तभी वो कहा करती थी, इनफैक्ट उनकी परफॉर्मेंस उनके लिए कहा करती थी, विशिंग दिस मैजिकल ब्यूटिफुल डीवा विद अ करिश्मेटिक स्माइल, द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हम आपके आइकॉन का जो टाइटल ट्रैक है ना, मैंने ऐसा गाना कभी ना देखा और ना ही कभी सुना।
0: मिर्ची 90s का सेट।
1: इस इंट्रोडक्टरी गाने को देखो तो देखते ही रह जाओ, और सुनो तो यूं कि ये क्या सुकून घोल दिया गया है कानों में।

माधुरी दीक्षित के एक्सप्रेशंस इन द सॉन्ग आर जस्ट माइंड ब्लोइंग। आई मीन आई डोंट थिंक कि कोई सिर्फ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से एक पूरे पौने चार मिनट के गाने को इतना खूबसूरत बना सकता है कि आप जितनी बार उसे देखो दिल से बस एक आह निकले और आप कभी बोर ना हो पाओ। एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता जी की आवाज में इस गाने को आपकी 90s की प्लेलिस्ट के लिए सजेस्ट करते हुए नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा अगर मुझे कहीं ढूंढना चाहते हैं सो दैट इज माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद जारू, ओनली ऑन

0: द फिनोमिनन कॉल्ड माधुरी दीक्षित। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये फिनोमिना ना पहले साइंटिस्ट बनना चाहता था। सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मैं साइंस स्टूडेंट थी, अपनी माइक्रोबायोलॉजी करना चाह रही थी और मैंने सोचा था, तभी मेरा ड्रीम थी कि मैं जेनेटिक्स में रिसर्च करूंगी किसी दिन। मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट था, मैं 3 साल की थी तब से मैं कथक सीख रही हूँ। तो स्कूल में भी मैं बहुत हिस्सा लेती थी, बहुत ट्रॉफीज जीते हैं स्कूल के लिए डांस कॉम्पिटिशन में वगैरह। ड्रामेटिक्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मेरे जो स्कूल में मेरी सबसे बड़ी बहन है, उसकी फ्रेंड थी, उनके फादर राजश्री में काम करते थे। एक दिन उन्हें राजश्री वालों ने कहा कि जरा अपनी नजर रखना, कोई लड़की है क्या, ऐसा ऐसा रोल है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने मेरा नाम सोचा और उन्होंने आके मेरे पेरेंट्स से पूछा कि आपको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये इतना अच्छा डांस करती है। हम लोगों ने कहा नहीं, मम्मी ने कहा नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों में वगैरह, क्योंकि ना तो हम किसी को जानते थे, उनको छोड़ के और किसी को जानते नहीं थे जो मूवीज में हो। लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, कहा कि मिलिए राजश्री वालों से, बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल अपने जैसे लोग हैं। और जब उनसे मिले तो कहीं कॉन्फिडेंस आया नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। और स्क्रीन टेस्ट हो गई और पता नहीं वो फिल्म हो गई।
0: वेल, ये इनकी डेब्यू फिल्म थी 1984 की अबोध। उसके बाद तो 80s में इन्होंने तहलका मचा दिया था भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

0: ये तो आपको पता होगा कि 80s में माधुरी दीक्षित की कुछ शुरुआती फिल्में कुछ खास चली नहीं थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर जब सुभाष घई ने उनको डिस्कवर किया तो फॉर्मली प्रॉपरली उनको लॉन्च करने का प्लान बनाया। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी ने क्या शेयर किया था।
1: जब मैंने अबोध की उसके बाद श्योर नहीं थे क्या करना है, मतलब मैं स्टडीज भी करना चाहती हूँ और मैं फिल्में भी करना चाहती हूँ। आवारा बाप में जैसे सेकंड रोल था, मीनाक्षी शेषाद्री वाज द मेन एक्टर, तो 10-15 दिन का काम होता था और फिल्म यूज़ टू गेट ओवर, तो मैं एक्टिंग भी कर लेती थी और फिर वापस कॉलेज भी जाना शुरू कर देती थी। तो एक बार आवारा बाप के सेट पे मुलाकात हुई सुभाष जी की, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कर्मा मैं फिल्म बना रहा हूँ, उसमें एक छोटा सा डांस है आपको करना है, विल यू डू इट। तो मुझे डांस तो बहुत पसंद था, सर यस आई डू इट। तो हमने वो किया, पिक्चराइज किया, और तभी सुभाष जी ने मुझे बोला कि आप ये ऐसे फिल्में नहीं करना, कि आई वॉन्ट टू लॉन्च यू अगैन बिकॉज आई थिंक देयर इज पोटेंशियल इन यू, एंड दैट्स हाउ आई गॉट अनदर चांस। आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, सो वी डिडंट नो एनीथिंग एट दैट टाइम। मतलब जो इतने सारे वो एड्स भी आ गए तो मुझे कोई असर नहीं पड़ा उसका भी, मुझे पता ही नहीं था कितनी बड़ी बात थी एट दैट टाइम। आज व्हेन आई लुक बैक आई फील ओह माय गॉड ये हुआ था तभी। तो ऐसा हुआ और यस आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दीज अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम।
0: अच्छा घई साहब के प्लान के साथ गड़बड़ ये हो गई कि इससे पहले कि राम लखन रिलीज होती, विच हैपेंड इन जनवरी 1989, नवंबर 88 में तेजाब रिलीज हो गई और माधुरी ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi. It's hot.
1: Purani jeans. With Charu. Only on Mirchi.
2: 80s में हिंदी फिल्मों के साथ सबसे बढ़िया चीज क्या हुई? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सबसे बढ़िया ये चीज हुई कि माधुरी दीक्षित की एंट्री हुई। वैसे तो उनकी डेब्यू फिल्म 1984 में आई थी, लेकिन 1988 में तेजाब के आने से तो सारा मामला ही ढंडलाइन हो गया ना। अच्छा, माधुरी को कब रियलाइज हुआ कि वो ऐसे ओवरनाइट सेंसेशन बन गई हैं, पॉपुलर हो गई हैं? सुनिए एक बार एक टेलीविजन कॉमेडी शो पर उन्होंने क्या शेयर किया था।
3: मुझे पहली बार रिकग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे हम लोग, बाहर आए तो सडनली एक बच्चा बोला, ए मुझे हीरोइन ही हीरोइन ही, तो भाग के आए दोनों। मैंने बोला, अरे मुझे पहचाना? बोलता है, मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया तो एम से सिग्नेचर किया मैंने, तो दूसरे को बोलता है, देख देख मैं मोहिनी मोहिनी।
2: तो ये बैड ओवर मोहिनी या बैड ओवर माधुरी वाले टाइम का आइकॉनिक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: माधुरी दीक्षित ने पता नहीं कितने गानों में राम जी का नाम लिया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे कि ओ राम जी बड़ा दुख दीना, या मेरा पिया घर आया ओ राम जी, या खलनायक के गाने में भी वो गाती हैं, मैं कैसी राम की गंगा हूँ, मैं तो बस नाम की गंगा हूँ। क्या ये यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए कोई साइन था कि उनकी लाइफ में भी राम नाम का कोई आने वाला है? सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी ने क्या कहा था।
1: बहुत चिढ़ाया जाता है तो लोग कहते हैं आपने अपने गानों में इतना राम जी राम जी राम जी किया है कि आपको हस्बैंड भी राम ही मिले उनका नाम भी राम ही है, तो इसलिए लोग टीज करते मुझे।
0: भाई हम तो यही कहेंगे वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। वैसे ये जोड़ी किसने बनाई थी, सुनिए माधुरी ने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मेरे ब्रदर ने बहुत ही खुफिया किस्म से हमारी मीटिंग करवाई थी, तो मुझे भी पता नहीं था और मुझे लगता नहीं कि उनके भी फैमिली को पता नहीं था। ऐसे ही पार्टी घर में की सबको बुला लिया और वहाँ मेरी मुलाकात हुई
0: और ये मुलाकात जीवन भर का साथ बन गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। You can catch me on Instagram @rj.charu, rj.charu, इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

0: खुशी थी।
1: तो भैये नाच गाना और खाना किसी भी सेलिब्रेशन के तंबू के लिए ये दो, नहीं राइमिंग वर्ड नहीं बोल सकती, ज्यादा हो जाएगा, ये दो सपोर्ट तो चाहिए रहते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जिस सेलिब्रेशन की आज हम बात करेंगे वो है हमारे ग्रोइंग अप इयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो बहुत बड़ी डील होती थी। और सबसे बड़ी डील ये कि सिविल ड्रेस पहन के स्कूल जाना होता था, वो ड्रेस जो हमने घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करके या बहुत सारे टैंट्रम्स थ्रो करके हथियाई होती थी, या कई बार नई भी मिलती थी नई ड्रेस, आपको पुरानी शादी फंक्शन त्योहार वाली ड्रेस ही पहना दी जाती थी। लेकिन बड़ी किक मिलती थी ये सोच के कि वो पहन के हम स्कूल जाएंगे, क्योंकि स्कूल वालों को बताना होता था कि हम सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं सिविल ड्रेस में भी ठा लगते हैं। और वो सारी प्लानिंग करना कि जो टॉफीज के पैकेट बांटने हैं उनमें कौन कौन सी टॉफीज जाएंगी, पॉपिंस, एक्लेयर्स, मेलेडी, किसमी, मैंगो बाइट, या घर वाले ज्यादा मेहरबान हो जाएं तो रबर शार्पनर पेंसिल भी देते थे। और पूरी क्लास वेट करती थी कि कब कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। अच्छा, फिर अलग अलग क्लासेस में जाते थे अलग अलग टीचर्स को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि आपके क्रश की क्लास में भी जाएंगे आप, और अगर आपके बर्थडे वाले दिन क्रश एब्सेंट हो जाता था तो बड़ा दिल टूट जाता था कि हाय उसने हमें सिविल ड्रेस में देखा ही नहीं। दोस वर द डे जब बर्थडे वाले दिन स्कूल में अपनी झांकी होती थी। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on

ग्रोइंग अप ईयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन और उस सेलिब्रेशन का डेकोरेशन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हर घरेलू बर्थडे पार्टी में यूजुअली एक सा डेकोरेशन होता था, गुब्बारे जिनको फुला फुला के मुंह दुख जाता था, और सबसे ज्यादा मेहनत लगती थी उस गुब्बारे में जिसको फुला के टॉफियां भर के सेंटर में लटकाना होता था और बाद में फोड़ना भी होता था। और याद है वो स्ट्रीमर्स या कलरफुल रिबन्स जिनको दीवार पे सेलो टेप से चिपका के हैप्पी बर्थडे लिखा जाता था। भाई बड़ी मेहनत का काम होता था, कई बार टेढ़ा मेढ़ा सा हैप्पी बर्थडे लिखा जाता था, कई बार तो त्योहारों के बचे डेकोरेशन पीसेस भी लगा दिए जाते थे। और बर्थडे वेन्यू डेकोरेशन जो यूजुअली घर का ड्रॉइंग रूम होता था, उसके साथ साथ अपना डेकोरेशन भी होता था। वो ड्रेस पहनी जाती थी जो हमने बड़े टैंट्रम्स थ्रो करके, घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करके नई खरीदी होती थी। कई बार किसी फेस्टिवल, ब्याह, शादी फंक्शन की पुरानी ड्रेस भी पहना दी जाती थी। मुझे याद है मैंने एक बार अपने बर्थडे पर लहंगा भी पहना था। और सबसे इम्पोर्टेंट होती थी वो कोन शेप वाली हैप्पी बर्थडे लिखी हुई टोपी, जिसका पतला सा इलास्टिक कई बार थुड़क करके टूट जाता था तो उसको गांठ बांध के जोड़ लिया जाता था। एक नंबर के जोकर लगते थे उसको पहन के, और हमको ऐसा लगता था पता नहीं क्या राजा बाबू लग रहे हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वो चीज है जिसके लिए पूरा झमेला पूरा सेलिब्रेशन किया जाता था, बर्थडे गिफ्ट्स। हाँ, बर्थडे में आप गिफ्ट नहीं लाए तो बर्थडे में क्यों आए? मुझे याद है बचपन में ना हमारे पड़ोस में एक बच्चा होता था जो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में लिटरली घर के एंट्रेंस पे खड़ा होता था ये देखने के लिए कि कौन गिफ्ट ला रहा है कौन नहीं ला रहा है। और अगर किसी के हाथ में गिफ्ट नहीं होता था ना तो उसको साफ साफ बोलता था कि पहले गिफ्ट लेके आ तभी खाने को मिलेगा। और याद है बर्थडे में उठा के कुछ भी गिफ्ट कर दिया जाता था, फूलदान, पेन, डायरी, टी सेट, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, मुझे तो एक बार तौलिए भी गिफ्ट मिले थे। और याद है इन गिफ्ट्स को हम यूजुअली काइट पेपर से रैप करते थे, तब इतनी फैंसी पैकिंग थोड़ी ना होती थी, कई बार अखबार में लपेट के भी दे दिए जाते थे, कई बार तो गिफ्ट में शगुन स्टाइल कैश भी दे दिया जाता था। और जिसका बर्थडे होता था वो गिफ्ट्स की वेट करता था, जो बर्थडे पार्टी में आते थे वो रिटर्न गिफ्ट की। और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था जब कोई छोटा सा रिटर्न गिफ्ट मिलता था, कोई एक्लेयर्स या एक टॉफी। और सबसे बढ़िया चीज, सारे बच्चों के जाने के बाद उन सारे गिफ्ट्स को खोलना। हाय, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की सबसे खूबसूरत चीज ग्रीटिंग कार्ड्स। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आज भी ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता है, लेकिन ऐसे मस्त नहीं होता है। उस टाइम पे तो जरूरी होता था, और सबसे खास बात हाथ से बना के दिया जाता था। कई बार बजट होता था तो आप आर्चीज गैलरी वगैरह से भी ग्रीटिंग कार्ड ले आते थे और उसपे कुछ सुंदर सुंदर सा लिख देते थे बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल के लिए। और याद है वो म्यूजिकल ग्रीटिंग कार्ड्स भी आते थे जिनको खोलते से ही टा टा टा टा टा टा बजने लग जाता था। और अक्सर ग्रीटिंग कार्ड को गिफ्ट के ऊपर पेस्ट किया जाता था सेलो टेप से। कई बार ज्यादा प्राइवेट होता था तो अलग से भी दे दिया जाता था। लेकिन वो जो हाथ से बने हुए ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे ना, फिर चाहे उनमें कितनी भी गंदी ड्राइंग की हो, कितनी भी गंदी हैंड राइटिंग हो, उनकी अलग ही बात होती थी। वो ऐसे लगता था कि किसी ने आपके लिए जेन्युइन कोई एफर्ट किया है। हाँ, आज की डेट में जिफ्स, स्टिकर्स, व्हाट्सएप मैसेजेस या AI कोई बढ़िया सा मैसेज निकाल के किसी को भेज देना वो भी अच्छा है, पर वो हाथ से बना हुआ ग्रीटिंग कार्ड, उफ उफ उफ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ कर्नल सिंह, ओ कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

ग्रोइंग अप ईयर्स की बर्थडे सेलिब्रेशन की बड़ी भारी जरूरी चीज बर्थडे केक। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मैं अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेशंस याद करूँ तो शुरुआत में केक घर पे ही बनता था। वो एक गोल मटोल सा ओवन होता था, सी थ्रू टाइप का, जिसमें ऐसे केक दिखता था फूलता हुआ, और उस केक को फिर टूटी फ्रूटी चेरीज या जेम्स जो होती थी उनसे डेकोरेट किया जाता था। उसकी आइसिंग भी घर पे ही बनती थी, वो शुगरी चीनी चीनी सी होती थी। और कैंडल्स, वो नंबर वाली कैंडल्स तो बाद में आई थी, और वो महंगी भी आती थी तो कभी आती थी कभी नहीं आती थी। जो सिंपल पतली वाली कैंडल्स होती थी उन्हीं से काम चला लिया जाता था। कई बार स्पाइरल कैंडल्स भी होती थी। एक बार तो मुझे याद है हमारे घर में किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में केक पर दिवाली की जो बची हुई कैंडल्स थी ना वही लगा दी गई थी और केक काटने के लिए चाकू, जो सब्जी काटने वाला चाकू होता था किचन का, उसी पे रिबन बांध दिया जाता था। फिर बाद में बाजार वाले केक्स आ गए, उसमें भी लिमिटेड फ्लेवर्स होते थे, चॉकलेट, बटरस्कॉच, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक फॉरेस्ट। केक यूज्ड टू बी अ सच अ बिग डील। केक कटिंग कितना इम्पोर्टेंट इवेंट वैसे आज भी होता है, और कितना जरूरी हो जाता था कि केक कटिंग से पहले बर्थडे पार्टी में पहुंचना है, नहीं तो फिर केक खत्म हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, गिफ्ट के पैसे कैसे वसूल होंगे। ग्रोइंग अप ईयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन, हाय सदके वारी जाऊं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।

0: कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता था फोटोज क्लिक करना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ग्रोइंग अप ईयर्स में ये अलग एक्सपीरियंस इसलिए भी होता था क्योंकि फोटोज खींचने के लिए एक अलग कैमरा होता था जिसमें हम 24 या 36 फोटोज वाली रील डलवाते थे और कोई भी फोटो वेस्ट नहीं की जाती थी। बहुत सोच समझ के फोटोज क्लिक की जाती थी क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ फोटोज ही खींच सकते थे और एक फोटो तो मैंडेटरी होती थी बर्थडे पे, बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय की वो फोटो जिसमें उसने वो कोन वाली टोपी पहनी होती थी जिसपे सामने हैप्पी बर्थडे लिखा होता था। क्या एक नंबर के जोकर लगते थे वो पहन के। खैर यूजुअली ये फोटोज घर का कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो क्लिक करता था और फिर वेट होता था कि ये रील्स को कब फोटोज की दुकान पे ले जाया जाएगा, इन्हें डेवलप कराया जाएगा, उन्हें एल्बम में लगाया जाएगा और जब तक अगला बर्थडे नहीं आएगा उसी एल्बम को बार बार देखा जाएगा। हाय वो डेज जब फोटोज एक्चुअली मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, यादों को सहेज के रखने के लिए क्लिक की जाती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi. It's hot.
1: Purani jeans. With Charu. Only on Mirchi.

गोल माल, चकोर माल, तिकोना माल, हर तरह का माल फिट हो जाता था वो छोटी सी प्लेट में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ग्रोइंग अप इयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की हम बातें कर रहे हैं, और उस प्लेट की बात कर रही हूँ मैं जिसमें स्नैक्स सर्व किए जाते थे। पूरी दुनिया सिमट जाती थी उस प्लेट में। समोसा, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का रस समोसे के नीचे घुसा हुआ, समोसे की चटनी गुलाब जामुन से लिपटी हुई, केक या पेस्ट्री की क्रीम में रसे मिसे आलू चिप्स। और ऐसा भी होता था कि खा हम अपनी प्लेट से रहे होते थे लेकिन नजर दूसरे की प्लेट पे होती थी कि कहीं कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो हमारी प्लेट में नहीं आई, उसकी प्लेट में है। और अगर ऐसी कोई आइटम होती भी थी तो ही करते हुए आंटी के पास जाते थे और बोलते थे कि भाई बाकी सब तो मिल गया, एक वो नहीं हमको मिला, वो भी प्लीज दे दो। और कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोला, लाइम, ऑरेंज, ये फ्लेवर्स तो होते थे, कई बार रसना रूह अफजा भी टिका दिया जाता था, चाय कॉफी भी पिलाई जाती थी कई बार। हाय, उस कागज की प्लेट के आइटम्स का जो स्वाद होता था ना, वो स्वाद लाइफ में कहीं और है नहीं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

ग्रोइंग अप इयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशंस, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनका मेन हिस्सा होते थे गेम्स एंड एक्टिविटीज। एक तो भाई टेप रिकॉर्डर पे कसेट लगा के डांस किया जाता था, सारे बच्चे अपने मूव्स दिखा रहे होते थे, उनको लगता था बड़े कूल हैं। कुछ के होते भी थे, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम के हिट गानों की मिक्स टेप चलाई जाती थी। फिर गेम्स होते थे जैसे ट्रेजर हंट, पासिंग द पास। मैंने तो अपने बर्थडे पे स्टापू भी खेला हुआ है, रस्सी भी कूदी हुई है, और दुनिया में सारे बर्थडे की यूनिवर्सल गेम म्यूजिकल चेयर, सारे घर की कुर्सियां उठा के गोले में सजा दी जाती थी। एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी म्यूजिक चलाने की, और कुछ बच्चों का ना साइड में अलग से कोई गेम चल रहा होता था। हाय, ग्रोइंग अप इयर्स की वो बर्थडे सेलिब्रेशंस और वो गेम्स, वो एक्टिविटीज। पुरानी टीम्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: It's hot. Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ये कॉम्बिनेशन देखना तो अलग ही लेवल होगा।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एक तरफ सूरज बड़जात्या, दूसरी तरफ है हिमेश रेशमिया। Okay, don't kill me for that. But actually, I'm way too excited for this upcoming film, जिसका नाम है ये प्रेम मोल लिया। और इस मूवी को सूरज बड़जात्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, of course, जिसके म्यूजिक के लिए हिमेश रेशमिया को लिया है उन्होंने। एंड हिमेश रेशमिया इस फिल्म में 7 मेलोडियस सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं। अब तक इस एल्बम पे सिर्फ काम कर रहे थे वो, बट रिसेंट अपडेट्स हैव इट दैट हिमेश रेशमिया के लेबल ने इस फिल्म के सारे गानों के राइट्स ले लिए हैं। बाकी फिल्म के लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं आयुष्मान खुराना एंड शर्वरी वाघ, जो हैं अल्टीमेट सुपरस्टार्स। एंड इन दोनों को सूरज बड़जात्या के फैमिली एंटरटेनर में देखना इज गोना बी रियली स्पेशल। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स